एक बार जोरदार ताली। पूरा देखो ना बापू दा इक बांदर, तुसी तस्वीर सारे ने वेखी हुई है, दिमाग चाजनी है, सुनो।